परम सत्कार्य गुरु प्रसाद संगत जी। अरदास गुरसिख पास एक बहुत वड्डी शक्ति, एक बहुत वड्डी ताकत, एक बहुत वड्डी विल पावर है। किसी कार्ज नूं आरंभ करना होवे तां वी अरदास, किसी काम नूं समाप्त करना होवे तां वी अरदास, किसी चीज की लोड़ होवे तां वी अरदास। इंज कह लो कि गुरसिख की अरदास गुरु नाल एक ऐसा संबंध है, ये जो मंगना चाहे परमात्मा को ले सकता है। पर ख्याल करना, कईयां दा विश्वास टुट गया, कई गुरु नालों टुट गए, कईयां दी जबान ते गिला आ गया, शिकवा आ गया कि मैनू ते बड़ा चिर हो गया अरदास करदे आ, मेरी नहीं अरदास सुनी गई। आओ, दास ने यह प्रकरण तां आरंभ किया कि सानू अरदास ते यकीन आ जाए। जिन्हां दी जबान ते यह गिला है कि साड़ी अरदास कबूल नहीं हुई, भाई मैं उन्हां नू

मालिक साहिबेद आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण कर देने हजूर फरमान कर देने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदियां तू गुरु नानक नू मिल सकने साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

दूसरा रस्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत शायद सानू दसते ने किते जातक नू वेख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या कर दे सब बाणी विच कहिंदे ने

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंद ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

इको ही मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

उल्टी प्यारी तुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाती। सात संगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

0: जे दूजे पासों मंगी है जे दूजे पासों मंगी है ता दाज मराई है मह दूजी नाही था
1: उतनू जोड़ जाइए प्रभु।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ये सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र

निरंकार मेर करेगा ओदी रजा विची जो कुछ मालिक देवेगा वो सबर ते संतोख नाल छकांगे। महाराज झूठी गल मेरा तो तुरना ही मुहाल है, सीधी गल कीर्तन हो गया और प्रशादा चाहिए, डाढ़ी भुख लगी। हजूर कहन लगे मरदाने काबर ना नंका रोटी देवेगा मारे कद देवेगा आखो श्री भाई कई दिन हो गए रोटी का मुंह ही नहीं वेखिया पक्की नहीं रोटी क्यों जी एवे किवें कीर्तन हो। हजूर कहन लगे मरदाने कोई नहीं उदास ना हो रोटी रब देवेगा पर अजे सबर कर मारे मेरे तो सबर नहीं जो हुंदा ए पिया जी रबाब जा ता रोटी दो नहीं तो मैनू आ गया दो आखो श्री बन मेरे धन गुरु नानक फतेह पातशाह जी मरदानी नु फिर प्यार नाल कहिंदे फिर सत्कार नाल कहिंदे हन मरदानी आ तू चढ़दियां कलां चरो महाराज बड़ा चिर चढ़दियां कलां चरे हां हुण नहीं रिहा जांदा रोटी ज। हजूर कहन लगे मरदाने इथे तो प्रबंध नहीं हो सकता। मरदाने ने कहा महाराज ये प्रबंध नहीं हो सकता ए पिया जे रवाज ते मैनू छुट्टी। मरदाने देख ले तेरी मर्जी है कथे आया सा करो कथे ही जांदे महाराज जांदे तां सही आप तुसी छकदे छकांदे पता नहीं तुहानू तां भुख लगदी नहीं है पर मैनू तां डाढ़ी लगी हुई। आखिरकार प्यारी साध संगत अज मरदाने ने भुख दे दुख वजो कई तरह के जवाब सवाल भी हजूर नार कीते आखिरकार जवाब दे के तुर पे आखो श्री भाई पहला इन क्लियर बाबा तू तो निरंकारी सच्चा साथी वेख के तेरे नाल तुरे आसा पर रोटी ना मिले तो कम किवें बनेगा।

सच्चे लाल नु जौरी कर सके। कीर्तन दे सोहणे लाल नु भाई गुरसिख परख दे, तुसीं परख रहे हो आकर ताही जुड़े बैठे हो, पर मर्दानिया जिथे इस चीज की परख नहीं है उथे नहीं रहना चाहिए। महाराज मसा मसा एक चंगा स्टेशन आया सी ते तुसी उपराम ही हो गए ना मरदाने इथे नहीं रहना। बाबा फिर तुसी जाना है ता जाओ, मैं तो नहीं जावांगा खुश रही हो आज। मरदानिया बचन मन महाराज फिर मन लवांगा चंगा तेज हजूर तुर पे मरदाना पदार्था दे लालच आके गुरु तू गुरु नु जवाब देके फिर लग गए। हजूर तुरे कहन लगा महाराज अनवाकुर जगह है आप अगे है तुसी ले आंदा है उस दिन रह के जिथे कहोगे मैं आ जावांगा। हुण इतनी कृपा तो करो भी दो चार टके तो रोज मिलन आखो श्री भाई। हजूर कहन लगे मरदानी चंगा तो सी साढ़े नाल ही चलता है पर तेरी मर्जी है पदार्था दे लाल पिछे रहन लगा है जगह चंगी नहीं है अगे तेरी मर्जी। महाराज तुसी चलो मैं आ जावांगा आखो श्री भाई। चंगा मरदाने टके तो तेन मिल जाएंगे कीर्तन जो करवा रहा है। हजूर चले गए ए मरदाना शहर च आ गया गुरु के बचन द्वारा चार पांच टके रोज मिल जाते हैं फिर कदे जलेबियां कदे मालपूड़े कदे बदाम कदे घ्यो ही छक लेंदा या खुश रही बस। थोड़े समय के अंदर ही मरदाना मोटा था दर खुराक जो चंगी मिल गई। एक दिन अचानक ही प्यारी सात संगत किसी का मकान डिग पिया मकान के ठाए च आदमी आके मर गया। जिन्हों का आदमी मरिया सी उन्होंने जाके बादशाह को फरियाद की बादशाह सलामत साडा आदमी मर गया भी किस तरह मरिया है फला सिर के मकान के ठा के मरिया वह मकान डिग पे। बादशाह ने कहा फिर जिसका वह मकान है उन्होंने फांसी चाड़ देवा खुशरी वाले इस नकड़ियां लगियां पेश किया। उसने किया भी की गल है मैनू फांसी क्यों चाड़ दे। बादशाह ने कहा इस वास्ते तेरा मकान गिर गया है वो मकान गिर गया इतना आदमी आते मर गया इस वास्ते। इस तरह चाचा से कह लगा बादशाह सलामत ये मेरा कसूर थोड़ा ये तो कारीगरां का कसूर है जिन्होंने मकान कमजोर बनाए लेबर तो मैं पूरी दिती है उन्होंने मेहनत तो पूरी दिती है ये मेरा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक इस वास्ते जिन्होंने मकान बनाया ना कारीगर ने उन्होंने फांसी चढ़ इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। वह कहने लगे बादशाह सलामत साडा कसूर नहीं ये तो मजदूर का कसूर है जिन्होंने मसाला टाइम नाल नहीं पहुंचाया सीमेंट इटा घरा इस वास्ते मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा इधर आके मर गया। बादशाह ने कहा चंगा फिर मजदूर फांसी चढ़ दे। जिसले मजदूर पेश किया हथकड़ियां लगी हैं ये कहने लगे बादशाह सलामत एक साड़ी अरदास कहो भाई कोई फरियाद है तो कर लो। कह लगे साडा कसूर नहीं क्यों भाई मकान डिगी है तुसी मसाला नहीं टाइम नाल पहुंचाया बंदा मर गया। कह लगे साडा कसूर नहीं जिथों असी मसाला चुके सीमेंट वगैरा तगारी च रख के सिर पे आउंदे सां रस्ते विच एक वेसवा मुजरा पे कर दी सी गाउण वाली ते असी उथे खड़ो जांदे सी इस वास्ते मसाला लेट पहुंचा सी मकान कमजोर रह गया डिग पिया बंदा मर गया साडा कसूर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है भी ये सच्चे है ना फिर वेसवा नूं फांसी चढ़ वापस श्री वाहे गुरू। इसलिए उन्हू बुलाया आतड़ियां ला लिया बिचारी ने पेश किया तेरे क्या मेरा की कसूर है सारी मिथ्या दसी। इसके अगे कोई जवाब नहीं सी आखो श्री वाहे गुरू इहदा कोई जवाब नहीं सी। पर जिसले फांसी वाला रस्ता इहदे गल च पाण लगे इहदी गर्दन सी जरा पतली ते ओह गण सी जरा खुली आखो श्री वाहे गुरू। ओह इहदे गल विच ना आवे जलादा ने कहा बादशाह सलामत इहदे गल च रस्ता नहीं आउंदा। बादशाह कहण लगा जिहदे गल च आउंदा उहनूं फांसी चाड़ो आखो श्री वाहे गुरू। ए हुक्म दी तमीर करन वास्ते जिहदे बादशाह दे पुलिस दे बंदे सन ओह तुर पए भी उह जिहा मोटा ताज़ा किधरों लभे। प्यारी साध संगत पुलिस के बंदे जा रहे सन ते अगे मरदाना हलवाई की दुकान से बैठा होया मिठाई पिया खांदा सी जाके पुलिस वाले ने कहा भी तू कौन है। मरदाने ने कहा रब का बंदा फिर रब के बंदी की रोड़ है सन पकड़ लिया। कहन लगा मरदाना किधर ले चलो कीर्तन कराने आखो श्री वाह अगे तो कोई मिलिया नहीं प्रेमी अज तुहानू किधरों प्यार जाग पिया। कहन लगे आ तेन दस दें
بادشاہ دے سامنے پیش کیتا پیاری سات سنگ تے جس نے مردانے دے گل چ رسا پایا خاصی والا وہ فٹ ہو گیا خوشی والا مردانہ رو پیا کہنے لگا مینو کیوں مار دے ہو بادشاہ نے کیا اس واسطے تینو پھانسی چاڑ دیا تیرے گل چ رسا فٹ آ گیا خوشی میرا کوئی قصور نہیں بادشاہ نے کیا انہاں گلاں نوں اتھے کوئی نہیں جان جس نے مردانہ پھانسی چڑھ لگا اس ویلے پیاری ساتھ نے تو مردانے نو میرا دھن گرو نانک چیتے آیا بکھے سانو بھی دکھ ویلے رب چیتے آؤں گا سانو بھی دکھ ویلے رب چیتے آؤں گا جی گھر ٹھیک ٹھاک ہے تو گرودوارے جان کی لوڑ ہی نہیں جی پتر بیمار ہو گیا دوائیاں کرتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب نہیں دیتا ہے تا گرودوارے آ کے کہنے پائی صاحب نو پائی صاحب کا کرو اردا تھا کچھ نہیں رات نے اگے کدی نہیں ویکیا گرودوارے جی ٹائم نہیں سی ملتا اب مل گیا ٹائم جی پہلے ہی آؤں رہتا تو لا علاج کیوں ہوتا پتر تیرا دکھ ملے گا کیوں حضور بانی کہتے ہیں دکھ تدے جا گزر گیا اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے دیوا بجھ جاتا ہے لائٹ آف کر دو اندھیرا ہی اندھیرا جگا دو کیا نا اسی طرح بھائی جی نہ تو دیوا نہیں جگایا تو دکھا دے ہلے تو آ ہی جان کسی اس لیے آ کے ارداسیں کرانے شلنگ پیٹا کرنے اکڑا پرساد میں دیگا بھی کرانے جو کچھ بھائی صاحب کہہ دو مترے بھی کرنے لگ جاتے تھی حضور کہتے نا دکھ دارو دکھا جراب میں چیتے کر رہے ہیں پر تلسی جی نے بڑا سندر لکھا دکھ میں سمرن سب کہے اس جگت کا یہ وہار بن گیا دکھ میں سمرن سب کہے